कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारहु कोई। माटी का क्या तू पै स्वामी,

कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूत्र तारी तुमते हो सो तुमरी गद मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर नौ निध्या वै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहों साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वण छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कुटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किसान स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई

जैसे सर सरिता सकल में समुद्र बड़ो, मेर में सुमेर मड़ो जगत बखान है। बिरखन बिखै जैसे चंदन बिरख बड़ो, तातन में कंचन अत उत्तम कैमान है। पंछियन में हंस मृगराजन में शार्दूल, रागन में श्री राग पारस पखान है। ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में है

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो, साढ़ी चार तो पंज सिमरन अभ्यास क्लास का समा हो चुकया है। जिनी भी संगत पंडाल तो बाहर है, सारिया के चरणों में निम्रता सहित बेनती है कि आओ, जो मालक निरंकार ने सानू यह समा बख्शिया है, अपा वध तो वध सतगुरु की शरण दे विच रह के सिमरन करके अपने मन की खोज करके अपा लाहा लईए। जिनी भी संगत पंडाल दे विच हाजिर है, आओ अपा सारा परिवार मिल के फिर अपने मन की खोज करिए। सारिया ने श्वास क्रास सिमरन करना है, आपा सारे ही बड़े ध्यान दे नाल जुगती सरवन कर लिए। सारिया ने नेत्र बंद रखने हैं, श्वास अंदर जानते उच्चारण करना है वाह। अपनी ही आवाज़ नू बहुत ध्यान दे नाल सरवन करना है। श्वास नू गगन आते, श्वास जदों साडा बाहर नू आंदा उच्चारण करना है गुरु, ते अपनी ही आवाज़ नू बहुत ध्यान दे नाल सुनना है। नेत्र बंद करके आओ सारे करो जी शुरू। वाह गुरु वाह गुरु वाह।

हौली हौली अंतर्गत हो जाना। गुरु श्वास अंदर जानते वाह महसूस करना, श्वास गगन वाहते गुरु महसूस करना, नेत्र बंद रखना।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा सब त्यावै है सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा

पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारिया है, चुन चुन सत्र हमारी मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हम हिराखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा दूथियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन की सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट की पट पट की जानै जा बुद कर।

जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूल

तुमरा लखा न जाए पसारा, किहिबिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बाहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट भयो संकरी कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। आब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।

दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताकि ताप तनिक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्व सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा

दोस्त दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। सेरियस तो जब पाए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहे, सुरसना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार। चाओ पई को कहै, चाओ पई संबत सत्रह है। सहस पुण जय, अर्ध सहस पुण दीन कही जय। भाद्रव

मरण लिखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबधा खोवे आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवे। जदों तुसी इत्थे आके गुरबाणी द्वारा अपनी खोज नहीं करते, तुसी दूजे की खोज करते हो। दूजी की आ माया। जदों नेत्र खोले, नेत्र खोलदिया सार ही साडा आकार दे विच ध्यान जांदा सारिआं दा, इह माया दा शरीर आ, इह च हुमे रखी आ। पर उदों पहलां तुहाडा पिता तुहाडा परमात्मा बिल्कुल तुहाडे लागे आ, जिहड़ा तुहानूं सांह दे के जिउंदा रखदा पिआ, जिहनूं महाराज कहिंदे आपे करता कर कर देखे देंदा सास गिराहा है। उह सवासां नूं ग्राही दे रिहा। हुण सारे इस सतगुर नूं देख रहे आ, पर महाराज कहिंदे देख के मुक्ति नहीं मिलनी जिन्ना चिर इस नाम की विचार नहीं करते। तुसीं अजकल जो है ऑनलाइन भी आपां वेख लीए जां सोशल मीडिया ते सानू परमात्मा दस्या जा रहा, सामने परमात्मा देखो। पर महाराज जिन्ना चिर इस नाम च नहीं समाउंदे, इस शब्द च नहीं समाउंदे, तुहाडा जम्मण मरना नहीं मुक्कणा। ते की महाराज समझा रहे, कहिंदे सतगुर नूं सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठिया मुक्त ना हो वई जिचर शब्द ना करे विचार। हुण शब्द तुहाडी देह दे विच आ, असीं उहनूं बाहर लभदे पए, पर महाराज कहिंदे सब किश घर मैं, बाहर नाहीं बाहर जो ढोले सो भरम भुलाही, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया अंतर बाहर सुहेला जियो। जिन्हें उस परमात्मा नूं मिलिया इस शब्द दे राहीं मिलदा है। हुण देखो आपां विचार कर रहे हां, मेरी ये आवाज़ लंगर हाल च भी जाती है ते ये बाहर भी जाती है। हुण जिहड़ा कहे जी हाँ मी ये गुरमुख नूं आपां मिलने हां आवाज़ सुन के, वह तो संभव नहीं। ये आवाज़ द्वारा खोज करनी पैनी भी आवाज़ किहड़े स्पीकरां चों आ रही, वह तारा नूं फॉलो करदे मेरे तक पहुँच जाएगा। इदां ही महाराज समझा रहे, ये नाम साडे सारे अंदर आ, नौन द अमृत प्रभ का नाम देही मैं सका विश्राम। हुण जिहड़े जीव ने नाम तक पहुँचना है ते महाराज कहिंदे उहनूं देह च प्रवेश होना पैना, क्योंकि नाम शरीर दे विच आ, मन बाहर मुखी आ, इस माया दे विच बैठा है सूखम माया दे विच। इस करके महाराज समझा रहे आ भी असीं सतगुर की सारिआं ने सांभ करनी आ, पर महाराज कहिंदे बिना भागां तो उहदे दर्शन भी नहीं हुंदे। जे आपां लोचदे ना कई बार सानूं दर्शन हो जाण, तां महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे बिन भागां दर्शन ना थीए, भागहीन बहि रोए। जिहड़ा जी भागां तो हीणा क्यों आ, क्योंकि महाराज कहिंदे संगत दे विच आया ते उहने अपना भेत ना लिया, बैठिया आकार दा सहारा लिया, पांच मिनट बैठिया दस मिनट बैठिया, सिर्फ एक कर्म पूरा किया भी चलो दो घड़ी गुरद्वारे जाइए। उहनूं ये नहीं पता सी भी संगत विच आ के सानू अपने आप की सोझी मिलनी आ, एक स्कूल आ। ते जिहड़ा जीव स्कूल दे विच आंदा उहनूं पढ़ाई पढ़नी पैंदी आ, ते 430 अंग महाराज की पढ़ाई आ, वह सतगुर का भेद आ, जो सतगुर साडे नाल भी आ, अंदर भी आ ते बाहर भी आ। इस करके महाराज समझा रहे ने गुरबाणी भी, जिहड़ा जीव ये शरीर नाल जुड़ गया वह कहिंदे प्रेत नाल जुड़ गया। जदों प्रेत नाल जुड़ गया इधरों काम क्रोध ते हंकार ने अपनी सरकार बना ली भी आपां नूं जमा दे मार्ग तोरना है, जिहनूं महाराज कहिंदे माया मोह प्रेत है काम क्रोध अहंकारा, ये जम की सरकार है, इन्हां उपर जमका डंड करारा। हुण जदों सानूं दुविधा नाल जोड़ देंदे आ, ये कमली आ। देखो एक जीव कमला होवे परिवार का सब नूं वक्त पा दिंदा, जदों सारा टब्बर ही कमलियां का होवे उत्थे की हालत बनती होनी। तो महाराज कह रहे दुविधा बौरी मन बौराया, झूठे लाल जन्म गवाया, लिफ्ट रही फुन बंध ना पाया। तो जदों देखो सानू लपेटे च लै लैंदी आ, उही परिवार दे मैंबर जिन्हों बड़े प्यार नाल जी सत्कार करते आपां, असी उन्हां नफरत करनों नहीं हटते, क्योंकि जो तुहाडा दुविधा चिमड़ी तुहाडे विचार चेंज करते, उन्हें तुहाडी सोच चेंज करती, उही भाई भैन का आकार आ, उही आकार नूं पासे करके अपना दुश्मन आपां मनना शुरू कर देंदे उन्हां नूं। ते महाराज कहिंदे गल क्यों बनी, जदों तुहाडे विचार एक सी फिर कोई गलबात नहीं, रिश्ता लेण देण दा संसार दे उत्ते।

करे तेरा कार्ज सब सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरन साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करतां तेरा सब कुछ है जह दे सो प सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिन कै मन बसया बाजे शब्द कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे साचा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जन इच्छा सब सदा कुरबान कीता गुरु बिट हो जिस दियाँ इह वडियाइया कहे नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यार वो साचा बाजे पंच शब्द तत घर सभागै शब्द बाजे कला जित कर पंच दूत तुद वस कीते काल कंटकम तुर करम पाया तुजन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुख होआ तित कर आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरतम दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास ही सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमरो श्री हर राय। श्री हर

रहौ। सहस्तव नैन नन नैन है तोहे कौ, सहस मूर्त नना एक तोहि, सहस पद बिमल नन एक पद गंध, बिन सहस्तव गंध इव चलत मोहि। साब में जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष पावे।

मोलाऊ मंदे राम लिया मोलाऊ आम राम अपना कर जानिया सहज सुभाए मेरा मन मनिया रहाउ ब्रह्म काथ काथ अंत न पाया राम भक्त बैठे घर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जे मन सब जागत तरसया सो मरना गुर शब्द प्रगसया अब कैसे मरो मर नहीं मन मानिया मर मर जाते जिन रामना जानिया रहाओ मरनो मरन कहे साब कोई सहजे मर अमर होए सोई कहो कबीर मन पे आनंदा गया परम रे परमानंदा गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर कत नहीं ठौर मूल कत लाभ खोजत तनमय ठौना पाबऊ लगी होए सो जान पीर राम भगत अनियाले तीर रहाउ एक पाए देखो सब नारी क्या जानत है कौन प्यारी

सो जल निर्मल कथत कबीरा गौड़ी कबीर जी। जय कुल प्रूत न ज्ञान बिचारी विधवा कस न पई मैं तारी। जे नर राम भक्त नहीं साधे जन्म ते कस नाम हो परादी रहाओ। मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया बुढ़ पुज रूप जीव जग मजिया।

कबीर जी, जो जन ले कसम का नाओ तिनका सदवर हार जाओ, सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ। जिकट राम रिया परपूर तिनकी पा गई पंकज हम तूर, जात जुराहा मत का तीर, सहज सहज गुण रमय कबीर। गौड़ी कबीर जी, गगन रसाल चूह मेरी भाठी, सच मारस तन पया काठी, ओ को कही सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान विचारा रहाओ। सहज कलालन जो मिल आई, आनंद माते अंदन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कौ कबीर तो अन पाओ पाया। गौड़ी कबीर जी, मन का स्वभाव मन व्यापी, मन मारे कवन सहद थापी, कम सो मन जो मन मारे, मन को मारे कौ किस तारा रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई, कौ कबीर जो जान पयो, मन मसूद तृपण दे। गौड़ी कबीर जी, ओ यदि स्वयंबर तारे किन चीते चीतन हारे, कौरे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूझे बूझ।

गुरु प्यारियो, हुने जो आप शब्द सरवण करोगे वो भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया है। इस शब्द की रहाओ वाली तुक जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम प्रगासा गुरमुख बिरलै जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है, प्रभु मिलाप वाली अवस्था नाल उसकी जान पछाण हो जाती है। ये जग उसनों प्रभु की बनाई हुई एक बगीची जापती है।

लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे जिसनु पाई सा पाई दविंदर सिंह जी सोडी बड़े उत्साह नाल इना शब्दां दी कथा करके उस पुरानी याद नु ताजा करते हुया पाई साहब पाई गोपाल सिंह जी नु श्रद्धांजलि अर्पण कीती है। ते इना शब्दां दा संगीत उसे पुराने ढंग नाल ही महान संगीतकार श्री के एस नरूला जी ने दिता है। टी सीरीज सुपर कैसेट्स वालों ए उम्मीद करते हाँ के सारे माई पाई इस दित्ती हुई श्रद्धांजलि दा रस मानणगे ते सुपर कैसेट्स नू धन्नवादी बनाउणगे।

दे सतगुरु नदर करे। निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। ऐ सतगुरु आ निमक मात्र भी तू मेरे हिरदे विच वसदा है ना, भाव जिन्ना समा अख चमकन लगता है तू इना समा भी मेरे हिरदे विच वसदा है ते मेरा हिरदा ठंडा हो जाता है, मेरा तन मन शीतल हो जाता है। ऐ सतगुरु बख्शिश करो, सदा ही मेरे हिरदे विच वसया करो, नाम नाल मेरी झोली भर देवो। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, किथे खुशियां किथे खेड़ा जिथे सतगुरु दी नदर होवे। ते सतगुरु दी नदर किथे होंदी है, जिथे सिमरन है, जिन्हां घरां विच नितनेम है, प्रभु दा जाप है, उथे सतगुरु दी नदर होंदी है। छेवें सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज, सतगुरां दे समें भाई पला होया है, मां ते पुत्र कखां दी कुली विच गुजारा करदे ने, हथ दी गरीबी है, सवेरे खा लेंदे ने ते शाम दा फिक्र लगा रहिंदा है। पर सतसंगियो इस मां ने बच्चे नूं सिख्या किहो जी दित्ती है भी ऐ पुत्र तू मैनू काम तो जान तो पहला कीर्तन सुना के जाया कर, नितनेम सुना के जाया कर, हर रोज काम तो जान तो पहला पल्ला अपनी अम्मा नू नितनेम सुनांदा है ते फिर कीर्तन भी एक घंटा सुना देता है, फिर काम ते जांदा है। एक दिन कीर्तन कीता जदों टुरन लगा ना घरों काम वास्ते ते अम्मा की तक रही है, पल्ले दे अखां विच हंझू ने, चेहरा भी उतरिया उतरिया लगता है, पुत्र तू ठीक नहीं है, उदास लगता है। अम्मा तू आखदी सी भी जेड़ा मन ला के कीर्तन करता है, सुनता है, बाणी पढ़ता है, जो मंगे उसनू मिल जाता है, तू आखदी सी ना भई पुत्र तू की मंगदा होंदा है। है मेरी अम्मा मैं हर रोज कीर्तन करके ये अरदास करदा भई सतगुरु असी बड़े गरीब हां, तू बड़ा दूर वसदा है, मेरे कोल इन्ने पैसे नहीं कि मैं अपनी अम्मा नू लेके तेरे दर्शन कर जावां, किवें तेरे दर्शन नू तड़फदी रहिंदी है, तू जे किते बख्शिश करे ते गरीबां नू घर आके दर्शन दे जा। भल्ले दी मां ने सुनिया ते छाती नाल ला लिया, सतगुरु कोई गल नहीं, कोई उलांबा नहीं, असी गरीब हां, रहण वास्ते चंगा मकान नहीं, खाण वास्ते चंगा प्रशादा नहीं, कोई गल नहीं, पर तेरा लख लख वारी शुक्र है तू मैनू नाम दियां दातां दित्तियां ने, किहो जिहा पुत्र बख्शिया है, नाम दियां दातां दित्तियां पुत्र, जरूर अपनी भावना विच फर्क हो सकता है, गुरु दियां रहमतां विच कोई फर्क नहीं होता। पल्ला नित कर्म अनुसार कम ते गया है, सारा दिन मेहनत मजदूरी कीती है, आ जदों शाम नूं घर वापस आ रहा है ना ते रस्ते दे विच पल्ले नूं एक मित्र ने रोक लिया, ओए पल्लिया
जिस गुरु दा कीर्तन तू रोज करदा है अलागे अपने पिंड विच ओ गुरु आए हुए ने। पल्ले नू चाह चढ़ गया, गुरु आए हुए ने। नस पिया इस पासे दौड़ के गया, मैनू ही दर्शन देन आए ने। जदों इस पिंड विच पुजा ते आ सामने तख्त ते छेवें सतगुरु हरगोबिंद महाराज बैठे ने। बहुत सारी संगत दर्शन करन वास्ते खलोती है, लाइन लगी हुई है लंबी, ते विच पल्ला भी जाके खलो गया। की तक रहा है, जिन्हां नूं मालक ने धन दिता है उन्होंने धन दे ढेर लाए पए ने। कोई सुंदर रमाला रख देंदा है, कोई दुशाला सतगुरु अगे रख देंदा है। पल्ले ने भी अपनी जेब विच हाथ पाया, सत्संगियो जेब दे विच कुछ भी नहीं, निका भी पैसा नहीं, नाले अग्गे नूं नमस्कार करन वास्ते हो ही जांदा है। मन दे विच बड़ा दुख पार आया, सारा दिन मजदूरी ते कीती है पर अज दिहाड़ी नहीं ना मिली। अब मजदूर दा किहड़ा जोर हुंदा है, बेशक मालक आख देवे भी गल नूं कठे लै ले, अज कोई पैसा नहीं। पलिया किड्डा तड़फदा हुंदा सी गुरु दे दर्शना नूं, अज तेरे भाग जागे ने ते नमस्कार करन वास्ते निका भी पैसा नहीं। अज ते इंज लगदा है जिवें सारी गरीबी अज ही आई होवे। अज पता लगा गरीबी किड्डा डाढा दुख हुंदा है, बड़ा मन बैराग पार आया। नाले नमस्कार करन वास्ते अगे नूं होई जांदा है ते जेब दे विचों इक रुमाल कढ़िया, ते रुमाल दे विच की है, इक गुड़दी रोड़ी बनी हुई। आ गरीबी दे विच कई बार एहो जे दिन भी आ जांदे ने, गुड़दी रोड़ी खा लेनी, पानी रज के पी लेना। रुमाल जेब चों कढ़िया है, नाले अगे हो ही जांदा है मत्था टेकण वास्ते। ओ मेरे सतगुरु दिलां दियां जानण वाले दूरों ही इहदे वल देखी जांदे ने। जदों असीं गुरु घर दी दलीज ते पैर रखदे हां ना, साडे मन दे विच की है गुरु बोलण तों बगैर ही जाण लैंदा है। इहदे मन दे प्यार नूं गुरु दूर बैठे जाण गए देखी जांदे ने। सतगुरु आप अपने आसन तो उठ के अगे नूं आ रहे ने। संगत हैरान होई, किन्ने नमस्कार करन वास्ते खलोते ने ते सतगुरु उठ के टुर पए। इधरों पल्ला मत्था टेकण वास्ते अगे नूं बद रहा है पर नीवी पाई हुई है, सोचां विच डुबिया होया है। सतगुरु गरीब हां, कोई बेटा नहीं लिया। इन्हें नूं सतगुरां ने आके आवाज मारी, लिया वे पलिया तेरियां गंडां मैं खोल देंदा। रमाल पकड़िया होया है ना हाथ च, गंडां खोल लिया है। लिया तेरियां गंडां मैं खोल देंदा। सतगुरां नूं देखिया ना, हैरान हो गया। सतगुरां ने रमाल इहदे हाथ चों पकड़ लिया, आप गंढ खोली ते एक गुड़ दी रोड़ी कढ़ी ते मुंह दे विच पा लई। ओए पल्लिया, तेरे जिन्नी मिठी पेटा ते अज कोई भी नहीं लेके आया। किन्नी मिठी पेटा ले आया। पल्ले ने सतगुरां दे चरण पकड़ लए। सतगुरु मां कोलों तेरी शोभा सुनदा हुंदा सी, तू गरीब नवाज, मेरी अम्मा गल्लां करदी हुंदी सी, अज ते अखां नाल तक लिया तू ते सची गरीब नवाज है, सची गरीब नवाज है। चरणा नूं पकड़ के हंजुआ नाल तो दिता, दर्शन कर करके रजदा है नहीं। सतगुरु हाथ जोड़ के पल्ला आख रहा है, जे तुसी हुक्म करो ते मैं नस के जाके अपनी मां नूं भी लै आवां।
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਲੈ ਆਵਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਚੱਲੀਏ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ। ਪੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੱਲਿਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੈਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾਈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਧਰੋਂ ਪੱਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਂ ਆ ਦੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ। ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਜੇ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪੱਲੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਕ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਛਕ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਛਕਾ। ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਡ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ।

0: स्पष्ट हो, जिसमें प्रथम भगवती स्मृता गुणान के लिए क्या है, फिर उन्नति गुरु अमरदास रामदास है और हाय आजन हाल गोविंद रो सिमरो श्री हर आय श्री हर कृष्ण जी ते आई है, जिस विषय सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिय का नान जावे ताए सब थाई होना जी सहाय, दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई होना जी सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दी दार दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलना जी श्री वाहेगुरु। आप जी दे सिखां दा मान नीवां मत उच्ची मत मत का रखा, आप अकाल पुरख वाहेगुरु हे जमाणिया दे माण नितान्या दे तान न्योटियां दी ओर, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी का कुटान कुटान कुटान शुक्र है सत सुचे पातशाह जी, आप जी ने सानू अमृत वेला बख्शिया, अमृत वेले से जागने बख्शे, अपने दर घर से लैके आए हो सत सुचे पातशाह जी, आप जी का कुटान कुटान कुटान शुक्र है सत सुचे पातशाह जी, दिखिया हुई दातों का दिते हुए स्वासों का सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज, महाराज जी हो आग्या बख्शो सुखनी साहब जी का पाठ करन दी ते होर बाणियां पढ़न दी, अपनियां बाणियां शुभ ते स्पष्ट आप ही पढ़ा लैन सतगुरु सच्चे पातशाह जी, कल जुगी जीवां अनेकां ही प्रकार दियां गलतियां हो जांदियां हुण महाराज जी हो बख्श लैणा बख्श लैणा बख्श लैणा सतगुरु सच्चे पातशाह जी हो, महाराज जी हो कृपा करो सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाणी दे अनुसार अपना जीवन ढाल सके, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਇਓ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸੁਰਬੰਧ ਦਾ ਭਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸਪਰਾ
2: ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਾਨ ਪਰੰਪਰਾ,
1: ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਪ ਹਰਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾ,
2: ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਜੁਗਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਹਰ ਜਗ ਉਦਰਾ,

0: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो,
1: कल क्लेश जन माय मिटावो,
0: सिमरो जास विसंबर एक है,
1: नाम जपत अगत अनेक है,
0: वेद पुराण सिमरत सुदाकर,
1: किने राम नाम है क्या कर,
0: इनका एक जस जी बसावे,
1: नांगी महिमा गणी नावे,
0: शांति एके दर्श तुहारो,
1: नानक गुण संग मोहे उदारो,
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम,
1: भक्त जना के मन विश्राम रहाओ,
0: रब के सिमरन गर्भ ना बसे,
1: रब के सिमरन दुख जम नसे,
0: रब के सिमरन काल पर हरे,
1: रब के सिमरन दुश्मन टरे,
0: रब सिमरत कछ बिगर न लागे,
1: रब के सिमरन अंतन जागे,
0: रब के सिमरन पौ न व्यापे,
1: रब के सिमरन दुख न संतापे,
0: रब का सिमरन साथ के संग,
1: सरनिदा नानक रंग,
0: रब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध,
1: रब के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध,
0: रब के सिमरन जप तप पूजा,
1: रब के सिमरन फिर से
0: रब के सिमरन तीर्थ स्नानी,
1: रब के सिमरन दरगे मानी,
0: रब के सिमरन होई सुफला,
1: रब के सिमरन सुफल फला,
0: से सिमरे जिन आप सिमराए,
1: नानक ताके लागो पाए,
0: रब का सिमरन सब ते ऊंचा,
1: रब के सिमरन उदरे मूचा,
0: रब के सिमरन तृष्णा बुझे,
1: रब के सिमरन सब कुछ सुझे,
0: रब के सिमरन नाही जम त्रासा,
1: रब के सिमरन पूर्ण आसा,
0: रब के सिमरन मन की मल जाए,
1: अमृत नाम अमृत माए समाए,
0: रब जी बसे साथ की रसना,
1: नानक जन का दासन दसना,
0: रब को सिमर से तन बनते,
1: रब को सिमर से पद बनते,
0: रब को सिमर से जन परवान,
1: रब को सिमर से पुर

0: अनेक माया रंग देखना बजावे
1: नाम जपत अकावे
0: ये मार के जात केला ऐसा नाम मन सदा ध्याये
1: परम गत पाइये
0: छूटत नहीं कोट लख बाही
1: पार पराई
0: अनेक बिगंजे आए संगारे
1: नाम तत्काल उधारे
0: अनेक जोन जन्मे मर जाम
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: हो मैला मल कबूल न तोवे
1: नाम कोट पाप हो
0: ऐसा नाम जपो मन रंग
1: पाइये साथ के संग
0: जे मारे के

0: कर्म
1: अर्गो नाम जब निर्मल कर्म
0: सगुण क्रिया मई उत्तम क्रिया
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया
0: सगुण उदम उद्यम पला
1: अर्घा नाम जपो जी सदा
0: सगुण पानी मई अमृत पानी
1: अर्गो जसन रसन बखानी।

0: भंग
1: पिंगल पर बद पर भवन
0: नहीं हो तो आवन
1: करतार करुणा में करुणा में दीन बेनती करे
0: नानक तुम्हारी कृपा करे
1: संग सहाय सुहावे नाची
0: जो बैराग दास प्रीत
1: लोक ग्रह पितर बसे
2: आनंद
0: खेल माया रंग रसे
1: दिल कर माने मने प्रीत
0: काल नावे मुड़े चीत
1: विरोध काम क्रोध मोह।

इस जागर को रख मनमाए इसको सिमरत परम गत पावे इसे त्याय सदा मन अंदर आठ पैर सिमरो की सरसना नानक सदा दे ये त्यावन जोग इसे त्यागत अवल पावे मन आठ पैर ताका जिस गावी जे मुखता को जिस रसन

0: सगल शरद टाके
1: मन जानी पर ठाकुर प्रभु ताके
0: मुस्ताद तुझको ना पहुँचे
1: मन सास सास सिमरो प्रभु चे
0: जे प्रसाद पाए दो लाम दे
1: नानक तागी भक्त करे
0: जे प्रसाद अपु खुल पहरी जे
1: मन जी सिमरत के आलस की जे
0: प्रसाद हस्त हस्त हसवारी
1: मन जी प्रभु को कबू न बिसारी
0: जे प्रसाद पाग मिलख तना
1: राग प्रोहि प्रभु अपने मना
0: जे तेरी मन बंत बनाए
1: उठ बैठ सत से

राम ज्ञानी से जन पय राम ज्ञानी सकल गिरी नाम राम ज्ञानी की सब ऊपर मया राम ज्ञानी सदा समदासी।

0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है।
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी को भोजे मेसर
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी की कीमत ना है।
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी का कथिया न जाय अखर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी का अंत न पा
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।

0: चार बिहारी कई कोट पन पर मैं उदासी कई कोट तभी सर होते
1: आत्म ध्यान धारे
0: कई कोट कब का विचारे
1: नाम
0: करते का अंत न पावे
1: कोट पे अभिमानी
0: कई कोट अंत ज्ञानी
1: कोट कृपण कठोर
0: कई कोट अपनी गर्दन निकोर
1: कई कोट पर दर्द को हिरे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया शर्माए
0: कई कोट पर देश परमाए
1: तित लावो तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए
0: कई कोट पाथ वृक्ष निप जाए
1: कई कोट पवन पानी बेसंतर
0: कई कोट देश को मंडल
1: कई कोट सस्यर सूर निखतर
0: कई कोट देव दान इंद्र सर छत्र
1: सकल सामग्री अपने सूत तारे
0: नानक जिस पावे तिस कुछ विस्तारे
1: कई कोट राजस तामक सातक
0: कई कोट वेद प्राण से रुद्र शास्त्र
1: कई कोट किए रथ संबंध
0: कई कोट नाना प्रकार जानत
1: कई कोट किए चिरजीवे
0: कई कोट गिरिमेश्वर अधिवे
1: कोट जग किन्नर पिशाच
0: कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगराज
1: सबके नेरे सबूते दूर
0: नानक आप लब त्रिया भरपूर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नर स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जर में जीवे मरे
0: कई कोट बहुत जोनी फिरे
1: कई कोट बैठक भी खाए
0: कई कोट काल जग पाए
1: कई कोट किए तरवंत
0: कई कोट माया में चिंत
1: जय जय पाना तय तय राखे
0: नान सब प्राप्त आते
1: कई कोट पे बैरागी
0: राम नाम संग तिले लागे
1: कई कोट प्रभु को खोजते
0: आदम है पार ब्रह्म लहते
1: कई कोट दर्शन प्रभु प्यार
0: इनको मिलो प्रभु विनाश
1: कई कोट मांगे सत्संग
0: पार ब्रह्म तिल लागा रंग
1: को होए आप सुपरसन
0: नानक तेजन सदा तन तन
1: कई कोट खानी अखंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होवे अवतार
0: कई ज्योति नो विस्तार
1: कई बार पसरे उपासार
0: सदा सदा एक एक ओंकार
1: कई कोट कीने भोपाल
0: प्रभु होए ब्रह्मा समाध
1: आपका अंत

क्रोध विकराल कभू होए बह बड राजा कभू आप कीर्त में आवे जो प्रभु राखे ते वीर है कभू होए पंड

0: समझे आप
1: आपे रजय सबके साथ
0: आपकी नो आपन विस्तार
1: सब कुछ उसका करने हार
0: उसने बिन नहीं कहो कुछ होए
1: तांदर अंदर एक सोए
0: अपने चंद आप करने हार
1: कौद करे रंग पार
0: वहीं आप मन अपने माह
1: नानक की मत क्या न जाए
0: सात सात सात सात प्रभु स्वामी
1: गुरु प्रसाद किने बखियानी
0: सच सच सच सब की ना
1: कोर में देखे ने मिले जीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: अद सुंदर पार रूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी
1: कड़ कड़ सुनी सर्वन बखियानी।

राम नाम जो करे विचार मान धन मुख बोले हर मुखी एको एक एक पछाने नाम संग जिसका मन मान्या और प्रसाद अपना आप सुजय सा संग हर जिसके आंदन कीर्तन केवल ख्यान एक ऊपर जिस जन की आशा पार ब्रह्म की जिस मन भूख जिसको हर ब्रह्म चितावे प्रभु अपना कृपा करे ऐसा सत ऐसा दुष्ट आया।

आपे आप सकल में आप अविनाशी नाही कुछ खंड अलख पे पुरख प्रताप जिन प्रभ जाता सो सो पापांत आपके सेव सकल उदार आपे में लै कृपाल उनकी सेवा सोई लागे नाम जपत पावे विश्राम जो कुछ करे सुप्रभ के रंग जैस पाए होए सोए प्रभ का किया जन मीट लगाना जिस देव उपदे तिस माए समाए

0: सब की तिसका दिया हदर बे
1: अंसुराजु को कहावे
2: प्रभु की कृपा बिना के तावे इस दिन हर जाने का वार
1: प्रसाद टूटे हो रोग
0: नानक सोजन सदा अरोग
1: जीव मंदिर को थामे थमन
2: जीव गुरु का शब्द मने सब मन
1: जीव पखार नाव चतरे
2: प्राणी गुरु जन लग्न स्तरे
1: जीव अंधकार दीप प्रकाश
2: गुरु दर्शन देख मन होए

0: सेवक सास आस मारे
1: अपने जन का पर्दा ढाके
0: अपने सेवक की सर पर रखे
1: अपने दास को देव बढ़ाए
0: अपने सेवक को नाम जपाए
1: अपने सेवक की आपत अपने सेव की आप पत रखे
0: आपके
1: सेवक को न पहुंचे
0: सेवक उलते उचे
1: जो प्रभा अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया किस प्रगटाया
1: की गिरी में कल रखे
0: प्रसन्न करे लस्कर को लाखे
1: जिसका सास न काटता
0: राखो राख कर हाथ
1: मानस जतन करत बपाद
0: किसते कर्तव्य थे जात
1: मार न रखे अब न कोई
0: सब जिया को रखा सोई
1: गाय सोच करे रे प्राणी
0: जब नानक प्रबल खुडानी
1: बारंबार बार प्रभ जपिए
0: अमृते मन तंत्र पिए
1: नाम रतन जिन गुरमुख पाया
0: और नाई पुष्टाया
1: नाम ताना मोर उपरांग
0: नाम सुख नाम का संग
1: नाम रस जो जन तरताने
0: मंत्र नामे नाम समाने
1: उड़त बैठ सो बदना
0: महानान जन के सदका
1: बोलो जिस जे बादन रात
0: प्रभ अपने जन की निदाद
1: प्रभ अपने जन
0: करो भगत आत्म के चाहे प्रभ अपने सोरे आसमाए
1: जो आओ बसो जाने
0: प्रभ अपने का हुकुम पछाने
1: महिमा कौन बखानो
0: इसके गुण एक ना जाने
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: नानक से जन पूरे
1: मन मेरे दिन की ओट ले
0: मंडन अपना तीन जन दे
1: जन अपना प्रभु पुछाता
0: सोजन सर्व तो का दाता
1: सर्व सर्व सुख पावे
0: इसके दस पाप मिटावे
1: अवर से अनु सगली शाड़
0: जिन

0: कोई
1: पुरख नहीं डोलाने
0: मुझे चौ साध के संग अंत प्रकाश आंदे लाग नानक नाम रते सोए सतगुरु ते निर्मल मत लई
1: जिनको प्रभु होए दयाल
0: सेवक कीनो सदा निहाल जन्म मरण दुख भ्रम गया जन्म जन्म का टूटा गांडे प्रभु अपना नानक जन ते आया
1: काम
0: आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख।

0: ते होता
1: जब तारी अपन सुन समाद जब इस गावन जय न जपत
0: किसे व्यापत
1: जब अपन आप पार ब्रह्म
0: हो कहा किसो वत परम
1: अपन के ला प्रतिजा
0: करने हार न दूजा
1: जब ओवत ब्रह्म के वक्त नहीं
0: बंदर मुक्त को किस

0: चलता करने हार अविनाशी सुख अपनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: जब की त्रास कहो कि सोए
0: जब अभिगत गोचर प्रभ एका जब नाथ निरंजन गोचर गा दे आपन आप ही अचर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप केवल जगदीश जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे कनक रावण करने हार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई जय सर्व

0: सुंदरता की दृष्टि
1: दर्शन श्रेष्ठ
0: चरण कमल जा के अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर रूप
0: हर सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामे पुरुष प्रधान
0: मन बसे सो होत निहाल।

0: है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा करो।
0: कौन पानी वह संतर माए इसे पिने नहीं को उठाओ वेद प्राण स्मृत में देख वाणी प्रभु की सबको बोल सर्वकला कर खेल खेल सर्व ज्योत में जागी ज्योत
2: स्वामी
0: गुर प्रसाद परम का नाश
2: संत
0: जना के हृदय संत जना के पेखन सब ब्राह्मण
1: संत
0: जना सुने सुख बचन

नाम त्यावै देव तेतीस अर साधिक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारे जे नाम समाद्यो हरख सोग।

0: नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार। नाम सिरोमण सर्व मैं भगत रह लिवतार। सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार।
1: सत सुरो सील बलवंत सत पाए संगत सघन गुरु मत निर्वैर लीना। जिस तीरज तुरत वल तुजा सेत वैकुंठ बीना। परसह संत प्यार जय करता रह संजोग। सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग। परसेओ संत प्यार जय करता रह संजोग। सतगुरु सेव सुख पायो।

0: सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो मस्तक निशान सचो कर्म कलय जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो।
1: तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो नैण बैण मोहे एक एक दो ठाए ना जाण्यो सुपन एक परतख एक एक समह लीणो तीस एक अर पंज सिद्ध पै

0: सुबास है,
1: स्वरूप है के मितो विभूत है,
0: कर्म तो पसा है के आत्म प्रभा है, मद पार छंत है प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुणगान मुदाम, अन गण प्रणाम मुन मन सलाम, अन पवन आस मुन मन प्रकाश, अन शिव जी अंगी आसन अपंग, जल थाल अमंड दिस विष अपंड।

मंडस है खलखंड से जपा जपे थपा थपे अमृता अमृत है करुणा कृत अमृतेश्वर है परमेश्वर है जपा कृत अमृता अमृत विश्वंबर है करुणालय है पवपंजन है अर्गंजन है अकलंक

0: अंग प्रिया छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे
1: नामे समस्त निवास
0: निरकामंग विपुते समस्तुल स्वरूपे
1: प्रणासी सदर्म विपुते
0: सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी
1: समस्त

0: सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें तप प्रसाद सवहे दीनन की प्रतपाल करे नित संतो बार गणी मन गारे भोगत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है
1: दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत नहार है
0: दया दुख दोखन को दल दूजन के पल में दल डार है
1: खंड खंड प्रचंड बहारण पूरण प्रेम की प्रीत संभार है
0: पार न पाए सके पद्मा पत वेद देव भेद उचार है
1: रोजी राज विलोकत राज करो ग्रहण की रोजी न टार है
0: पदंग कुरंग पुजंगम भूत भविख भवान।

0: संत की बार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई
1: करम लिखन ते पाई है रुत सहाई
0: त्रिपवन मौलिया।

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
1: गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंदब सहोदरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा
1: गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा
0: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान वजन अपरंपरा
1: गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा
0: गुरुदेव आज जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

अहंकार करंदा विश्वास घाती अकिरत कारण मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामुदी मूरे अरसों कुरसों तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा

0: सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला।
1: वड़ी बड़े जा वड्डा नाओ वड़ी बड़े जा सच नी आओ वड़ी बड़े जा नीचल थाओ वड़ी बड़े जाने अलाओ वड़ी बड़े बुझे सर पाओ वड़ी बड़े

0: वाह गुरु वाह गुरु
1: वाह
0: गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
1: वाह
0: गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
1: वाह
0: गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
1: वाह
0: गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
1: वाह गुरु
0: वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु